गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज नी जय। दिल्ली अक्षरधाम महोत्सव नी जय। जय जय। आपड़ा नित्य नियम मुजब आपड़े सर्वप्रथम हाथ जोड़ी स्वामी श्री स्मृति साथे श्लोकनु गान करीशू।

जब जब होत धर्म की हानि, जारे जारे पृथ्वी पर अधर्म व्यापे छे त्यारे अधर्मनु उच्छेदन करवा, धर्मनु स्थापन करवा माटे भगवान पृथ्वी पर प्रगट थाय छे। केवी रीते प्रगट थाय?